0: I am Ashutosh Singh. Right now I can't sing.
1: You can.
2: Okay, man.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio।
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679.
1: UK.
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
8: तरसती निगाहों की यही तड़प तो मोहब्बत को और निखारती है। कभी ख्वाबों में मिलते हैं, कभी तसव्वुर में बातें करते हैं।
9: प्रेमी हर हाल में सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं,
8: क्योंकि प्यार ही उनकी जिंदगी है, प्यार ही उनकी सांसों का सहारा है।
9: अल्फाज नफीस आलम के हैं और अंदाज मोहम्मद अजीज का।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुपट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
15: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
16: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
15: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
16: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
15: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
16: 07548419678
15: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
3: Come. You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio।
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274-201679.
1: UK.
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio।
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 8877
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: तेरे
1: वतन से दूर वतन का एहसास,
2: आपके जज्बात का अक्कास,
1: सदाबहार नगमों की मिठास
2: जो है हर लम्हा आपके पास।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
4: यू आर लिसनिंग टू
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
6: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
5: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
7: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
7: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679.
1: UK.
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मेनिगम सुपर स्टोर। मेनिगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BDA.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio।
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
15: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
16: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
15: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
16: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
15: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
16: 07548419678
15: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
3: You're listening to
17: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio।
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679.
1: UK.
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

बच के किधर, ना किसी की भी परवाह नहीं कोई गम, सामने कोई आए है किसमें ये दम, हम जमाने में नहीं किसी से डरे, राजा राज करे, हम है राजा।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होलसेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
15: यू आर लिसनिंग टू
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
3: टैक्सी लाइसेंस,
1: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679.
1: UK.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa
5: service. Call today at 01274-201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shokut Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio.

काबीना जन्म लेती है। नाबीना जन्म लेती है उस कौम की औलाद, नाबीना जन्म लेती है उस कौम की औलाद, जो कौम दिया करती है तावान में आंखें। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशात आप डैब पे भी सुन पाते हैं। जी हाँ, आप BFD एशियन रेडियो के नाम से हमें डैब रेडियो पे सुनते हैं ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में। और सामिन, अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त और ज़्यादा आपकी मेमोरी स्पेस भी नहीं लेते। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं बायक वक्त आपके अपने और लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM के जरिए। और साथियों, अब प्रोग्राम रंग महफिल लिए आपके मेज़बान सैयद हसन हाज़रें और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस परा आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारी ये नशात सुन रहे होंगे, आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को सलामत रखे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर खुदा न खास्ता आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक आपको सेहत की दौलत से मालामाल कर दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और सामीन, आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से। और आपको बताते चलें कि अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत फरमाना चाहें, कॉल करना चाहें, तो नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274 01274, और स्टूडियो का नंबर है 3066773। और हाँ, अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप है 00447800599563, दैट्स 00447800599563। आइए तो अपने आज के रंग महफिल का आगाज करते हैं, और आज की इस बज्म का उन्वान है एक ही रंग के गीत आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और जैसा कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज ही हमने खूबसूरत शेर से किया था कि नाबीना जन्म लेती है उस कौम की औलाद, नाबीना जन्म लेती है उस कौम की औलाद, जो कौम दिया करती है तावान में आंखें।

और सामिन अभी आप आंखों के हवाले से खूबसूरत गीत सुन रहे थे। शायरी थी जनाबे हसरत जयपुरी की, मौसीकी थी शंकर जयकिशन की, आवाज सदाबहार मोहम्मद रफी की। और आंखों के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गीत था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

0: और सामिन, अभी आप एक गैर फिल्मी गीत सुन रहे थे। शायरी थी रोशन नगीनवी की, मौसीकी थी मोहम्मद हुसैन की, और आवाज थी सदाबहार जावेद अख्तर की, जिनकी टोटल जिंदगी का हासिल यही गीत है, यही उनकी पहचान है। लेकिन क्या ही खूब पहचान है, आंखों के हवाले से लाजवाब गीत था। कहते ना कि तेरी सूरत को देखने वाले, तेरी सूरत को देखने वाले अपनी आंखों से प्यार करते हैं। जी हाँ, जमाने में कुछ ऐसी सूरतें जरूर होती हैं जिनके लिए लोग हमेशा दुआगो रहते हैं कि अल्लाह उन आंखों को सलामत रखे कि जो दुनिया के लिए ख्वाब देखती हैं। और सामिन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करना चाहें तो स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677। ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677। और अगर व्हाट्सएप के जरिए आज के इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनना चाहें तो व्हाट्सएप है 00447800599563। और आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ स्टूडियो मावन हैं, स्टूडियो असिस्टेंट हैं तोराब हैदर, जिन्हें हम आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं, हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं स्टूडियो में, और हम इनकी मुआवनत का, इनके तावन का शुक्रिया अदा करते हैं। और सामिन, अब चलते हैं और ब्रेक के बाद आपसे होती है मुलाकात। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से प्रोग्राम रंगीन महफिल,
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
2: 1413 AM एंड ऑनलाइन। You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274488877।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
10: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
10: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
10: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK
12: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
12: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
12: जो दुल्हन करे सिंगार।
9: आज ही मामू काके की दुकान,
12: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
12: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
12: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
13: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
14: आप
5: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
11: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
5: मैनिंगम सुपर स्टोर
7: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
7: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
7: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
14: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
15: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
14: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
15: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
14: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
16: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio.

सामीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगी महफिल में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब रुखसार अहमद साहब, आपने हमें याद किया। मैनचेस्टर से सुन रहे हैं हमारी नशात और आपने हमारे आज के इस प्रोग्राम के माविन और आप हैदर को खुश आमदेद कहा है स्टूडियो में, जो कि हमारी मुसलसल मुआवनत कर रहे हैं। स्टूडियो असिस्टेंट है हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो अगला गीत रुखसार साहब आपके नाम है, खूबसूरत गीत है। जब भी आंखें मिली हैं आंखों से, जब भी आंखें मिली हैं आंखों से, दिल ने दिल का मिजाज पूछा है।

और सामिन अभी आप गीत सुन रहे थे, आवाज थी महनाज की, फिल्म का नाम था दामन, शायरी थी तस्लीम फाजली की, मौसीकी थी एम अशरफ की। और शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शकील साहब, आपने एक खूबसूरत गीत सुनना चाहा है, मोहम्मद रफी की आवाज है। शायरी है राजेंद्र कृष्ण की, मौसीकी है रवि की, आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है नई रोशनी। तेरी आंख का जो इशारा ना होता, शायद है राजा कृष्ण की, मौसीकी रवि की, आवाज मोहम्मद रफी, का नाम है रोशनी। तेरी आंख का जो इशारा ना होता,

और शायद आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की और आपने आंखों के हवाले से खूबसूरत गीत सुनना चाहा है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, बिल्कुल सही। कहते ना कि कौन सा नाम तुझे दूं ऐ मेरे जालिम महबूब, तू ही कातिल है मेरा, तू ही मसीहा मेरा।

और समीन ये पसंद थी शायदा की शफील से, बहुत ही खूबसूरत गीत था आंखों के हवाले से। और समीन अब इतना वक्त है कि हम इस घंटे का आखिरी गीत आपके लिए पेश करते हैं आंखों के हवाले से, या आँखियाँ कह लीजिए या आँखें। मेरे ख्याल में ये भी एक खूबसूरत गीत है। शायरी और मौसीकी रविंद्र जैन की, आवाज़ है हिमलता की, फिल्म का नाम है आँखियों के झरोकों से। और इसी गीत के साथ ही ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद आपसे लाइव कॉल्स में होगी मुलाकात। आप इस वक्त सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 एम, और आपके लिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रंगे महफिल, जिसमें आपके मेजबान हैं सैयद हसन, और आज स्टूडियो की मावनत कर रहे हैं तोराब हैदर।

0: 12 kilohertz, Bradford Asian Radio.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: The hope of the past, the need of the present, and the demand from the future.
2: Medium Wave 1413 par aap sun rahe hain Bradford Asian Radio.
4: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
6: का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली।
4: बेगम जरा खाना बनाना, भूख लगी है।
8: मुझसे नहीं बनता, जाए बाहर से ले आए।
4: तो फिर मैं जाऊँ सेकंड वाइफ के पास?
8: मैंने टेकवे का कहा है, सेकंड वाइफ का नहीं।
4: अरे अब ब्रेडफोर्ड में सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट खुल गया है,
8: रियल इंडो चाइनीज फूड्स के स्पेशलिस्ट, जर्सी और स्पेशल अंगारा कढ़ाई, जिसने खाई उसी को पसंद आई।
4: और हाँ, सेकंड वाइफ के हाथों बने डिजर्ट जरूर चखिएगा।
8: सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, 78 लिली क्रॉफ्ट रोड, BD9 5AB, फोन ब्रेडफोर्ड 2020।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है, इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स, लिस्टर हिल्स साइंस पार्क, कैंपस रोड, ब्रेडफर्ड, BD71HR।
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

एक बार फिर कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शकील साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ना जाने आज शकील साहब की आवाज़ हमें क्यों नहीं आ रही।

और सामीन अब एक बार फिर कोशिश करते हैं, अल्लाह करे तो इनसे बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।

0: और जी हाँ सामीन, आप शकील साहब लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप?
1: ये अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है। आप सुनाएं कैसे?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज हमारा सिस्टम कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन देख लेंगे। तो कम अज कम आपकी शायरी लोगों तक तो पहुंचानी है ना हमने। वालेकुम अस्सलाम, सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
1: नमस्कार। खालिद सलीमी साहब, वाली भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब, नवीद भाई हैं, चौधरी फरियाद साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, और भी सभी बहन सबको महबूब लाही सबको।
0: वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
1: ये सैयद यूसुफ अली खान
0: जी, जी
1: नाज सैयद यूसुफ अली खान नाजिम
0: जी जी, इनायत कीजिए शायद।
1: कहते हैं रोने की ये शिद्दत है कि घबरा गई आंखें।
0: क्या कहने, क्या कहने, आंखों के हवाले से खूबसूरत कलाम लाए हैं।
1: रोने की ये शिद्दत है कि घबरा गई आंखें, अश्कों की ये कसरत है कि तंग आ गई आंखें।
0: क्या कहने शकील साहब, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। दिल शर्म से खाली पर आंखों में आया है।
0: आहा।
1: सुनते ही जफा का गिला शर्मा गई आंखें।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मेहराब में होता नहीं मस्तों का गुजारा।
0: मेहराब में होता नहीं मस्तों का गुजारा, वाह वाह।
1: अबरू के तले खूब जगह पा गई आंखें।
0: बहुत खूब। कहते हैं ना कि तेरा इशारा ये अबरू है दफ्तरे मानी। तेरा इशारा ये अबरू है दफ्तरे मानी, जिधर से देखी ये मजमून या निकलता है।
1: माशाल्लाह। फरियाद फरहाद ने क्या देख के सर शीशे से फोड़ा।
0: फरहाद ने क्या देख के सर शीशे से फोड़ा, वाह वाह।
1: सूजा ना कुछ उस रू से के थर्रा गई आंखें।
0: बहुत खूब बहुत खूब शकील साहब, वाह वाह।
1: चढ़ते नहीं अब मेरी नजर में माहो खुर्शीद।
0: आहा।
1: चढ़ते नहीं अब मेरी नजर में माहो खुर्शीद, देखा तुझे क्या मैंने के इतरा गई आंखें।
0: बहुत अच्छे बहुत। अब तो आंखों में समाती नहीं सूरत कोई, अब तो आंखों में समाती नहीं सूरत कोई, गौर से मैंने तुम्हें आकाश ना देखा होता।
1: माशाल्लाह। कहते हैं आकर तेरे कूचे में ना कुछ हमसे बन पाई।
0: आहा।
1: आकर तेरे कूचे में ना कुछ हमसे बन पाई, जाते हुए एक मुंह था कि बरसा गई आंखें।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बाकी शेर मत हैं। इतना भी न समझे के भलाए दिलो दीन है।
0: आहा।
1: इतना भी न समझे के भलाए दिलो दीन है, नाजिम तुम्हें क्यों उसकी पसंद आ गई आंखें।
0: बहुत खूब बहुत खूब शकील साहब, क्या कहें।
1: ये आंखों पे सब तो एक गजल है, मोहम्मद यूब जोकीन का नाम है।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: कहते हैं दूर रहकर वतन की फजा से जब भी अपनों की याद आई।
0: वाह वाह।
1: दूर रहकर वतन की फजा से जब भी अपनों की याद आई, हिजर में रह गया दिल तड़प कर आंख भर के अलम से भर आई।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: अहले घर से ये उनसो मोहब्बत।
0: वाह वाह।
1: अहले घर से ये गुनसो मोहब्बत, बेजरों से ये अंदाज़े नफरत।
0: आहा।
1: फूल गया आपका जोद तक्वा, देख ली आपकी पारसाई।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: वो तसन्नो है अखलाक क्या है, वो तसन्नो है अखलाक क्या है, वो नमाइश है इखलास क्या है।
0: बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह।
1: वो मोहब्बत नहीं है रिया है, वो न जब तक दिलों में सफाई।
0: वाह वाह।
1: उनका अंजाम है सरबुलंदी, उनका अंजाम है सरबुलंदी, जिनके दिल में नहीं खुद पसंदी।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जिनको मोहब्बत है खाक सारी से, उनको आती नहीं खुद नवाई।
0: बहुत अच्छे।
1: शुक्रिया। दिल है इंसान का आप गीना, इसके जलवों का है ये खजीना, बैठने देना گھر سے قدورت آئینے کی رکھیں صفائی.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: دور دورا ہے کسب و ریا کا, دلوں سے خلوص آج ان کا. دیکھیے اب کہاں جا رہی ہے اپنے مرکز سے ہٹ کر خدائی.
0: بہت اچھے.
1: خدمت خلق میں دن گزاریں, زندگی اس طرح سے سنواریں.
0: بہت خوب.
1: خدمت خلق میں دن گزاریں, زندگی اس طرح سنواریں, عاقبت میں ملے سرخ روئی اور یہاں بھی نہ ہو جگ ہنسائی.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: افیشے کہتے ہیں سب سے بہتر ہے صبر و قناعت.
0: آہا.
1: سب سے بہتر ہے صبر و قناعت, روح کو اس سے ملتی ہے راحت.
0: راحت.
1: لانا ہر وے شکایت زبان پر, سننا ذوقی کسی کی برائی.
0: بہت خوب بہت خوب. لاجواب ہے.
1: سب سے بہتر ہے صبر و قناعت, روح اس کی ملتی ہے راحت.
0: بابا
1: لانا ہر کے شکایت زباں پر, سننا ذوق کی کسی کی بجائے.
0: بہت اچھے بہت اچھے. شکیل صاحب بے حد شکریہ. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے اور اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے. بہت شکریہ. سلامت رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور جی ہاں سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی محترم اور ریگولر کالر جناب شکیل صاحب. شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں, ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور اس بزم کو رونق بخشتے ہیں.

और सामीन, अगर आज के इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनना चाहें तो आप भी कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, और आप सभी के पास हमारा व्हाट्सएप भी है स्टूडियो का 00447 800 599 563 00447 800 599 563। इसके ज़रिए भी आज के इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। शायद टेलीफोन लाइन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन व्हाट्सएप हमारा बेहतरीन काम कर रहा है। शकील साहब भी व्हाट्सएप के ज़रिए ही तशरीफ़ लाए हैं। आइए, जब तक आप सुनने वाले आते हैं, एक और खूबसूरत गीत आँखों के हवाले से आपकी नज़र है।

और सामिन अब हमारे अगले कॉलर लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ना जाने क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में आपसे भी हमारी व्हाट्सएप पे ही बात होती है।

0: आपको पता था ना गधा क्या है?
1: जी जी बिल्कुल जानता है जी।
0: वो ना एक बच्चा ना सुबह सुबह गधे को लेकर स्कूल चला गया स्टूडेंट, ठीक है।
1: अच्छा,
0: तो उस्ताद ने टीचर ने बोला अरे तू गधे को क्यों लेके आया है, ठीक है। तो वो टीचर कहता है कि टीचर का तू गधे को क्यों लेके आया है, तो वो कहता है अपना शागिर्द कहता है स्टूडेंट कहता है कि अपना टीचर जी आपने खुद ही बताया था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है। तो मैंने सोचा चलो ये भी इंसान बन जाएगा कि इसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी।
1: क्या कहने, बहुत ही प्यारा जोक आपने सुनाया, बहुत अच्छा।
0: बहुत शुक्रिया सर, और मतलब शकील साहब को, जंगीर साहब को, चौधरी मुजफ्फर साहब को, महबूब लाई भाई, चौधरी फयाद है, राणा जी साहब, सभी को मोहब्बत भरा, चाहत भरा बहुत बहुत सलाम। मेरा ख्याल में आपका बहुत टाइम ले गया।
1: कोई बात नहीं है, आप कलाम भी सुनते ना आपसे। जी जी
0: जी, मैं बिल्कुल जनाब छोटी सी पोएट्री लेके आया हूँ और मैं तमाम माशाल्लाह आपकी रोशन समातों की नजर करना चाहता हूँ।
1: इनायत
0: शेर लिखता है, गूंद के मट्टी जो कभी चाक पे आ जाती है।
1: आहा, क्या कहने, क्या मिसरा है, वाह वाह।
0: बात बेमहरी ये अफलाक पे आ जाती है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर लिखता है, आसमानों पे उड़ो ज़हन में रखो के जो चीज
1: आहा
0: खाक से उठती है वो खाक पे आ जाती है।
1: क्या कहने, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर ताक। फिर से पढ़िएगा, वाह वाह।
0: जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी चाहत है और बेपनाह उल्फत है आपकी।
1: जी जी, ना
0: जो आप इतनी हौसला अफजाई करते हैं। क्या दिखता है, आसमानों पे उड़ो ज़हन में रखो के जो चीज खाक से उठती है वो खाक पे आ जाती है।
1: एक शेर याद आ रहा है ना कि तुम खाक से बने हो कभी ये ना भूलना, ऐ मुश्ते खाक तुमको बुलंदी अगर मिले।
0: सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह, लाजवाब लाजवाब माशाल्लाह। तो शेर अर्ज़ है,
1: इनायत,
0: रंग और खुशबू का कहीं कोई करे जिक्र तो बात,
1: वाह
0: घूम फिर का तेरी पोशाक पे आ जाती
1: है। क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा, वाह वाह वाह वाह।
0: बहुत शुक्रिया जनाब,
1: फिर से पढ़िएगा।
0: बहुत शुक्रिया कि ये जो ना सब ये शकील साहब का कर्म है कि उन्होंने दस्ते शफकत मैं ना चीज के हाथों पे रखे हैं, तो अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी।
1: ये शेर फिर पढ़िएगा, बड़ा खूबसूरत था पोशाक।
0: जरूर, रंग और खुशबू का कहीं कोई करे जिक्र तो बात, घूम फिर का तेरी पोशाक
1: पे आ जाती है। और मुझे इससे वो शेर याद आया कि हर आंख उसे पैराहाने सब्ज में देखे, हर आंख उसे पैराहाने सब्ज में देखे, ऐ काश वो तादेर ये पोशाक न बदले।
0: सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। वो कहता, आपने तो हमेशा की तरह वो कहते रहे कि समुद्र को कूजे में बंद कर दिया, यकीन करें कि अब मेरा इससे आगे पढ़ना जो बेजा है, यकीन करें।
1: जरूर जरूर पढ़िए, खूबसूरत इंतखाब आप भी लाए।
0: बहुत शुक्रिया। शेर लिखता है, बिखरा बिखरा सा है अंदाज़े तकल्लुम उनका,
1: बिखरा बिखरा सा है अंदाज़े तकल्लुम उनका,
0: और तोमत मेरे इदराक पे आ जाती
1: क्या
0: है।
1: क्या कहने, क्या कहने, लाजवाब है लाजवाब है। कहते हैं कि कल तक न थे,
0: अपना मोहब्बत है आपके,
1: कल तक न थे जो तर्ज़े तकल्लुम से आशना, कल तक न थे जो तर्ज़े तकल्लुम से आशना, मैं आज उन्हें शोला नवा देख रहा हूँ।
0: सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। और हासिल नज़्म शेर है,
1: जी जी इनायत,
0: नखल महफूज रहे बादे हवादिस जो चले,
1: आहा नखल महफूज रहे बादे हवादिस जो चले,
2: वाह वाह वाह वाह।
0: क्या कहने चाहता, ये तुराब अदर के लिए
1: हाँ, तुराब, जी जी तुराब सुन रहे हैं, जी जी।
0: नखल महफूज रहे बादे हवादिस जो चले, एक आफत खसो खाशाक पे आ जाती है।
1: आहा, एक आफत
2: वाह वाह वाह वाह,
1: खसो खाशाक पे आ जाती है। क्या कहने, क्या कहने, मुझे इससे वो शेर याद आया कि
2: बहुत खूब,
1: बहुत ही अच्छा एक शेर था। तो राम मुझे शेर पढ़ने दो ना प्लीज। जी जी, कहते हैं कि हवा से कैसी परिंदों ने साजिशें कर ली, हवा से कैसी परिंदों ने साजिशें कर ली कि पेड़ गिर भी गए घोंसले सलामत हैं।
0: सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, और तमाम रोशन समातों के आखिरी शेर है साहब।
1: जी जी नायत,
0: छोड़ जाए जो कोई चाहने वाला फरताश,
1: आहा
0: छोड़ जाए जो कोई चाहने वाला फरताश, जिंदगानी राय सफाक पे आ जाती है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब है लाजवाब है।
0: सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, अल्लाह ताला
1: बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाते रहिएगा। और तोराब हैदर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तोराब शुक्रिया अदा करो।
2: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया सर। तोराब हैदर, अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत वाली और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके हमेशा खुश रखे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
1: अल्लाह हाफिज़। और आपके लिए हमारी जानिब से

0: लग जा गले।
1: क्या कहने क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गाया। गीत से मुझे एक शेर याद आया, कहते हैं ना कि दामन में मेरे फूल मोहब्बत के डाल दो, दामन में मेरे फूल मोहब्बत के डाल दो, फिर आए या ना आए जमाना बहार का।
2: बहुत खूब,
3: सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, बहुत खूब।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा उस्मान भाई। और अजय सामीन अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ शेफील्ड से थे जनाब उस्मान भाई।
2: हाँ।
1: बहुत शुक्रिया इनका अदा करते हैं, खूबसूरत गीत इन्होंने गाया। और अब यूं करते हैं कि हमारे जो भी अगले कॉलर आते हैं उनसे बात होती है, लेकिन पहले थोड़ा सा एक गीत सुन लेते हैं। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
2: बहुत अच्छा।

0: और सामिन अब आज के इस प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हमारे साथ आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? ठीक हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह छोटे शाह जी भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह नजरबाद से बचाए।
0: आमीन आमीन। तो आज के इस प्रोग्राम में क्या सुनाएंगी आप?
1: मैं आज आपको मुनीर नियाज़ी की गजल सुनाऊंगी।
0: जी जी, इनायत कीजिए, इनायत कीजिए।
1: जी तो मैं शुरू करती हूँ। रंजे फराक के यार में रुसवा नहीं हुआ।
0: आहा, क्या कहना।
1: रंजे फराक के यार में रुसवा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ।
0: आहा हा, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ, क्या कहने। फिर से पढ़िएगा ये शेर, वाह वाह।
1: रंजे फराक के यार में रुसवा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ। ऐसा सफर है जिसमें कोई हम सफर नहीं,
0: ऐसा सफर है जिसमें
1: कोई हम सफर नहीं। रास्ता है इस तरह का जो देखा नहीं हुआ,
0: क्या कहने, लाजवाब है। फिर से पढ़िएगा ये शेर, वाह वाह।
1: कि ऐसा सफर है कि जिसमें कोई हम सफर नहीं, रास्ता है इस तरह का जो देखा नहीं हुआ। मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दियार में, मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दियार में। बरसों यहाँ रहे हैं ये अपना नहीं हुआ,
0: क्या कहने, क्या कहने। फिर से पढ़िएगा ये शेर, वाह वाह वाह वाह।
1: जी मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दियार में, बरसों यहाँ रहे हैं ये अपना
0: नहीं हुआ। वाह वाह।
1: वो काम शाहे शहर से या शहर से हुआ,
0: आहा।
1: वो काम शाहे शहर से या शहर से हुआ, जो काम भी हुआ है वो अच्छा
0: नहीं हुआ। क्या कहने, क्या कहने।
1: मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ।
0: क्या कहने मुनीर नियाज़ी के, क्या कहने।
1: माशाल्लाह।
0: और जी हाँ सामीन, अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी रुखसाना, बेहद शुक्रिया आपका अदा करते हैं। और सामीन अब इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम पे पहुंचता है। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में रौनक लगाई, आप तशरीफ़ लाए और आप ही के दम कदम से ये रौनकें हैं। अल्लाह पाक आप सभी को भी सलामत रखे, शादो आबाद रहें। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से तो राब हैदर सैयद भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी तो राब, इजाज़त लीजिए, कहिए अल्लाह हाफिज़।
2: अल्लाह हाफिज़,
0: बहुत शुक्रिया आपका। और जी हाँ, तो राब ने इजाज़त ले ली और अब हम अपने स्टाइल में जो हमारा एक तरीका है उससे इजाज़त लेते हैं कि आप सभी सुनने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ निभाया, साथ दिया, कॉल्स की, रौनक लगाई रखी आप सभी ने। अल्लाह पाक आप सभी को सलामत रखे। और अब इस खूबसूरत शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अब तो जाते हैं बुत का दे से मीर, अब तो जाते हैं बुत का दे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

0: जज्बात का अक्कास,
1: सदाबहार नगमों की मिठास
0: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली।
6: बेगम जरा खाना बनाना, भूख लगी है।
7: मुझसे नहीं बनता, जाए बाहर से ले आए।
6: तो फिर मैं जाऊँ सेकंड वाइफ के पास?
7: मैंने टेकवे का कहा है, सेकंड वाइफ का नहीं।
6: अरे अब ब्रेडफोर्ड में सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट खुल गया है।
7: रियल इंडो चाइनीज फूड्स के स्पेशलिस्ट, जर्सी और स्पेशल अंगारा कढ़ाई, जिसने खाई उसी को पसंद आई।
6: और हाँ, सेकंड वाइफ के हाथों बने डिजर्ट जरूर चखिएगा।
7: सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, 78 लिली क्रॉफ्ट रोड, BD9 5AB, फोन ब्रेडफोर्ड 2020 00।

0: इस नगमे को आपने पसंद किया होगा.
1: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
0: उसको मेरा हल्का सा एहसास तो है. उसको मेरा हल्का सा एहसास तो है. बेदर्द सही वो मेरा हमराज तो है. वो आए ना आए मेरे पास लेकिन शिद्दत से मुझे उसका इंतजार तो है. अभी नहीं तो क्या हुआ, मिल ही जाएंगे कभी. मेरे दिल में उसके मिलन की आस तो है. प्यार की गुवाही मेरे आंसू से ना मां.

जला दिए हैं तेरे इंतजार में। मैं हूं कि मुझको अब भी खजा ही नसीब है, तू है कि सांस लेता है हर दम बहार में, तू है कि अब भी प्यार को कहता है एक मौत हम

0: you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: फिरते हैं साथ साथ तमाम रात मगर फिरते हैं साथ साथ तमाम रात मगर लोग उसको चांद और मुझे आवारा कहते हैं उम्मीद करते हैं खूबसूरत शायरी आपको पसंद आ रही होगी तो ये सामीन प्यारा सा नगमा आप सब

पसंद किया होगा। जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, ये जान लिया हमने। जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, ये जान लिया हमने। लोग तो तब याद करते हैं जब वो खुद अकेले हों।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane, Bradford, PD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
15: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
16: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
15: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
16: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
15: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
16: 07548419678
15: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
3: You're listening to
17: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

मोहब्बत का नसीब है, लेकिन जब मोहब्बत इंतजार करती है लम्हे थम जाते हैं, जमाने रुक जाते हैं। मोहब्बत जिद्दी है, आखिरी सांस

करते हैं इस नगमे को आप सबने पसंद किया होगा। इंतजारे यार में यूं गुजर रही है जिंदगी, इंतजारे यार में यूं गुजर रही है जिंदगी, जैसे कोई शमा बुझ रही हो आहिस्ता आहिस्ता।

शुमार करते हुए बिखर गया है कोई इंतजार करते हुए, तुझे खबर ही नहीं है कि कोई टूट गया मोहब्बतों को बहुत पैदार करते हुए।

0: तेरा मगर माना कि पुर फरेब है वादा तेरा मगर करते हैं इंतजार बड़े एतबार से आंखों को इंतजार के लम्हात सौंप कर आंखों को इंतजार के लम्हात सौंप कर नींदे भी कोई ले गया अपने सफर के साथ.
1: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.

दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, लोग इंतजार ही नहीं करते। तो ये सामीन प्यारा सा नगमा आप सबके लिए है।

पसंद किया होगा। बड़े सुकून से रहते हो आजकल मेरे बगैर, बड़े सुकून से रहते हो आजकल मेरे बगैर, जैसे किसी उलझन से छुटकारा मिल गया हो तुमको। तो आइए सामिन, प्यारा सा नगमा आप सब

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

के झनक पायल बाजे से आप लता जी और हेमंत कुमार की आवाज में नयन तो नयन ना ही मिलाओ, देखत सूरत आवत लाज। हर्ष जयपुरी का कलाम था और वसंत देसाई का क्लासिकल या सेमी क्लासिकल धुन में रचा हुआ ये नब्बा। अब पेश खिदमत है रफी साहब की आवाज में तेरे नए नशेदे प्याले, इन्हें पिएंगे नसीबों वाले। फिल्म का नाम है गोरा और काला, आनंद बख्शी का कलाम है ये, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने खूबसूरत धुन से सजाया।

0: You are tuned to international radio channel Asian Radio Live.
1: अब पेश है लताजी और मन्ना दे की आवाज में फिल्म बसंत बहार से ये गीत. इसे शैलेंद्र ने लिखा है और शंकर जय कृष्ण ने इसकी तर्ज तरतीब दी है. नहीं मिली चैन कहाँ, दिल है वही, तू है जहाँ, ये क्या किया सही.

जी गोपाल, तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग तुम्हें वापस मिले। हाय, आज देवी माँ से कुछ और भी मांग ली थी। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बहार गाओ।

फिल्म बसंत बहार से लिया गया नगमा लता जी और मन्ना दे आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और ये प्रोग्राम आप ही के मनोरंजन के लिए एशियन रेडियो लाइव ग्लोबल चैनल से गुलदस्ते के रूप में जिसे एहसान मुकदम पेश कर रहे हैं। हमसे रब्ता कायम करना हो तो बाखुशी ईमेल कीजिएगा hassam@asianradiolive.com। हवे मारा गुजराती मित्रों माटे एक खास भेंट। चलिए हमें मनहर उदासनी महफिल में गजल सामरवानी कोशिश करिए छे। नयन ने बंद राखी ने बेचारे तमने जोया छे, नयन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे, तमे तो एना करता पण उधारे तमने जोया छे। मनहर उदास।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

सामिन अब हाजिर है दो महान आर्टिस्ट, मकबूल आवाजें नूर जहां और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। तेरे बिना रोगी हुए प्यासे नहीं, और इसी खूबसूरत गीत के बाद इसा मुकदम आपसे इजाजत चाहते हैं अगली मुलाकात तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, यार जिंदा सबत बागी, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679.
1: UK.
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ये थी लता मंगेशकर फिल्म गाइड में। सामिन आज भी हमेशा की तरह बहुत सी अच्छी बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सामिन आज हम सेहत के हवाले से बातचीत करेंगे कि लहसुन और शहद के जरिए वजन कैसे हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा सामिन वो गजाई इशिया जो फ्रिज में ज्यादा खराब हो जाती है उनके हवाले से बातचीत करेंगे। आपको आज मैं बताऊंगी बीफ पसंदे कबाब बनाने की रेसिपी और इन सब के साथ साथ सामिन तंज़ो मिज़ा और शेर व शायरी का सिलसिला प्रोग्राम में जारी रहेगा। आप मेरा साथ निभाते रहिए। रंग रंग प्रोग्राम आप एशियन रेडियो लाइव से इफ़त हमीद के साथ आप सुन रहे हैं। सामिन अब चलते हैं अगले नगमे की तरफ और उसके बाद शुरू करेंगे अपना सिलसिला अच्छी बातों का, प्यारी बातों का। अगला नगमा जो है ये भी बहुत खूबसूरत नगमा है, मेहंदी हसन और नूर जहाँ की आवाज़ भी लिया है हमने। फिल्म का नाम है दुनिया पैसे दी। चल चलिए दुनिया दी, उस नुकरे जिथे बंदा न

0: Rafat Hamid on Asian Radio Live.
1: ये थे मेहती हसन और उनका साथ दे रही थी मलका तरन्नुम नूर जहां फिल्म दुनिया पैसे दी में। समीन, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिला मकसद जिंदगी गुजार देते हैं या सिर्फ अपनी जात के लिए जीते हैं। ये दौलत और शोहरत तो कमा लेते हैं लेकिन लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाते और ना ही लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत और एहतराम का जज्बा पैदा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जात को दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं। वो दौलत, इज्जत और शोहरत के साथ बनिए नो इंसान के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जाती मफाद को भुलाकर इज्तमाई मफाद के लिए काम करते हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं और यही बेहतरीन लोग कहलाते हैं। जी, वक्त के साथ साथ इंसान भी बदलते हैं और उनकी ख्वाहिशें बदलती हैं, उनके मूड्स भी बदल जाते हैं, लेकिन बेहतरीन लोग वही होते हैं जैसा मैंने अभी जिक्र किया। बात हो रही थी वक्त की, तो अगला नगमा जो है फिल्म कागज़ के फूल से आपकी खिदमत पेश करती हूँ। सुनील दत्त और वहीदा रहमान की खूबसूरत फिल्म, गीता दत्त की आवाज़ में ये प्यारा सा नगमा, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, न तुम रहे न हम, आप सबके लिए।

0: आपने?
1: ये खूबसूरत नगमा सुना गीता दत्त की आवाज में फिल्म कागज के फूल से। समय ना कुछ सेहत के हवाले से बातचीत करते हैं। लहसुन और शहद की बात होगी कि इनके जरिए वजन कम कैसे किया जाता है और ये लहसुन और शहद जो है ये वजन कम करने का कुदरती तरीका है। सामिन, लहसुन से आप अपने खाने को हर रोज जो है ये पुरलुत्फ बनाते होंगे और शहद भी घर में यकीनन इस्तेमाल होता होगा और इन दोनों नेमतों को अगर हम मिलाकर इस्तेमाल करें तो उनके बहुत से फायदे आप हासिल कर सकते हैं। सामिन, माहिरीन ग़िज़ा जो हैं उनकी रोशनी में लहसुन और शहद को मिलाकर खाने से दर्जनों फ़वाद ऐसे हैं जिनको जानकर आप बहुत ही यानी कि यकीनन खुश होंगे। वज़न में कमी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए ये सादा सा नुस्खा जो है ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म की फालतू चर्बी के खात्मे में आपको मदद मिलती है। ये जो है कुदरती एंटीबायोटिक भी है। लहसुन और शहद जो हैं आपको बैक्टीरिया और वायरस से लगने वाली बीमारियों से ये बचाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। इसके अलावा खाने से आपका वजन भी कम होने लगता है और जिस्म का जो है ये इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है जिससे हर किस्म की बीमारियों से आपको तहफ्फुज मिलता है। ख़ास तौर पर जो मौसमियाती बीमारियां हैं उनसे आपको तहफ्फुज मिलता है जैसे नज़ला है, ज़ुकाम वगैरह है। और इससे ये नुस्खा जो है जैसे लहसुन और शहद आप मिलाकर जब खाएंगे तो आपके दिल को भी मजबूत करता है और आपके निज़ाम दौरान खून को बेहतर बनाता है। गले की ख़राबी में जो अफराद मुबतला हैं उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत आला है क्योंकि ये गले की खराश और सोजिश को कम करता है। इसके अलावा सर्दियों की आमद होते ही लोगों को नज़ला ज़ुकाम की बीमारी भी शुरू हो जाती है। वैसे सर्दियाँ ना भी हों यहाँ पर तो हर वक्त अक्सर मैं देखती हूँ कि लोगों को नज़ला ज़ुकाम की जो है वो शिकायत रहती है तो उसके लिए भी ये लहसुन और शहद जो है ये बहुत मुफीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फेक्शन से पैदा होने वाली बीमारियों से ये आपको बचाता है और इसके अलावा आपके बालों की चमक दमक और जिल्द की तरोताजगी के लिए भी ये एक कुदरती नुस्खा है। और ये लहसुन और शहद हर घर में होता है, आपकी किचन में एक ये अहम जो है ये एक जुज़्व है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और देखिए इसके कितने फ़ायदे होते हैं। साथ निभाते रहिएगा। अगर अभी अभी आपने शिरकत की है तो इस वक्त आप एशियन रेडियो लाइव से रंग तिरंग प्रोग्राम इफ़्फ़त हमीद के साथ आप सुन रहे हैं। अब चलते हैं अगला नगमा जिसको आशा भोसले की आवाज़ में लिया है। फिल्म है डॉन, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: डॉन फिल्म से आपने ये नगमा सुना जिसको हेलन पर पिक्चराइज किया गया था. सामिन तंजोमिजा का कुछ सिलसिला जारी करते हैं. एक मौलवी साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे और वो बच्चे से वो कहने लगे कि पढ़ो बेटा, हे से हलवा. हाँ शाबाश बेटा, हलक से निकालो हे हलवा. माँ घबरा कर, मौलवी साहब आप बच्चे के हलक से हलवा ना निकलवाएं, मैं आपको बनाकर भेज देती हूँ. बहुत खूब सामिन, ये तो रहने दे. इसके अलावा जो है, ये एक आदमी हर रोज चीनी का डब्बा खोल कर चीनी चेक करता फिर उसको बंद कर देता. दूसरे आदमी ने पूछा, तुम हर रोज चीनी क्यों चेक करते हो? तो पहला आदमी बोला, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि रोज शुगर चेक किया करो. बहुत खूब सामिन, चलते हैं अगले नगमे की तरफ और उसके बाद कुछ खाने पीने की बात करेंगे. ना जा कहीं अब ना जा, आपसे नहीं कह रही, ये मैं नगमे की बात कर रही हूँ जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ मोहम्मद रफी की आवाज में. ये नगमा है और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर यह नगमा पिक्चराइज किया गया है. फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में खूबसूरत नगमा मोहम्मद

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

मोहम्मद रिश्ती और माला को सुना। समिन कुछ अशार आपकी खिदमत में। तुझसे बिछड़ के रोती हैं तन्हाइयां मेरी, करते हैं बहन शाख से पत्ते झड़े हुए। तमाम उम्र की आवारगी पर भारी है वो एक शब जो तेरी याद में गुजारी है। मुझे ये नाज कि मैं हुस्न का मुसव्विर हूँ, उन्हें ये फख्र कि तस्वीर तो हमारी है। तू जो बदला बदल गए हम भी, प्यार करते थे बंदगी तो नहीं। वक्त कट जाएगा बाहर सूरत, तू कोई शर्ते जिंदगी तो नहीं। तमाम रात ना मुझको सुकून ना तारों को, किसी को काश किसी का इंतजार ना रहे। सामिन ये थे कुछ खूबसूरत अशआर और अब चलते हैं अगले नगमे की तरफ। ये बहुत ही प्यारा नगमा है किशोर कुमार और उनका साथ निभा रही हैं लता मंगेशकर। फिल्म है दो चोर। काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है।

किशोर कुमार, फिल्म जहरीला इंसान। एक दिन अकबर अलाहाबादी से उनके एक दोस्त मिलने आए, तो अकबर ने पूछा कि ये आज इधर कैसे भूल पड़े। उन्होंने जवाब दिया, आज शबे बारात है, लिहाजा आपसे शबराती ही लेने आया हूँ। इस पर अकबर अलाहाबादी ने बरजस्ता जवाब दिया, तोहफाए शबे रात तुम्हें क्या दूं, जाने मन तुम तो खुद पटाखा हो। बहुत खूब सामने, कई दफ़ा जो है ना ये शायर हजरात भी बहुत खूब जवाब देते हैं। इसी तरह दो शायर, एक जुर्रत जिनका नाम था, वो नाबीना थे, एक रोज़ बैठे फिक्रे सुखन कर रहे थे कि इन शाह जी आ गए। उन्हें महव पाया तो पूछा, हजरत की सोच में है? तो जुर्रत ने कहा, कुछ नहीं, बस एक मिसरा हुआ है, शेर मुकम्मल करने की फिक्र में हूँ। इंशा ने अर्ज किया, कुछ हमें भी तो पता चले। जुर्रत ने कहा, नहीं, तुम गिरा लगाकर मिसरा मुझसे छीन लोगे। आखिर बड़े इसरार के बाद जुर्रत ने बताया कि मैं मिसरा जो मैंने सोचा है वो ये था, इस जुल्फ पे फब्दी शबे दैजूर की सूजी। तो इंशा ने फौरन आकर गिरा लगाई, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। जुर्रत लाठी उठाकर इंशा की तरफ लपके, देर तक इंशा आगे और जुर्रत पीछे पीछे उन्हें टटोलते हुए भागते रहे। ये तो था एक अदबी लतीफा। सामईन, अब अगला नगमा फिल्म चाइना टाउन से लिया है, शमी कपूर पर पिक्चराइज किया गया ये नगमा। बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज हमारा दिल रुबा,

भी आपने फिल्म चाइना टाउन से ये नगमा सुना। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ ना कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। मूड होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यही आके फिसलते क्यों हैं। खूबसूरत आपने इशार सुने, और अब बात करते हैं दिल की। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। गीता दत्त की इस आवाज के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप सबने पसंद किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: 24/7, the best Asian music online. You're listening to Asian Radio Live.
1: Assalamu alaikum dosto, main hu aapki radio dost. Ji ha, Ghasia Khan Sabin. Aur is waqt aap sab hain? Ji ha, Asian Radio Live pe sun rahe hain Ghasia Khan Show. दोस्तों गौसिया खान शो में कभी तो आप सुनते हैं नगमे और अफसाने, कभी आप सुनते हैं जान गजल यानी गजलों पे मबनी खास प्रोग्राम, और कभी मैं आप सबके लिए आपकी फरमाइशी सॉन्ग लेकर हाजिर हो जाती हूँ. और आज इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए फरमाइशी सॉन्ग लेकर हाजिर हुई हूँ. और सबसे पहला सॉन्ग सुनवाने के भी पहले दोस्तों मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से कुछ बता दूं कि मेरा ये शो जो कि आप हिंदुस्तान में रात 10:30 बजे से 11:30 बजे तक सुनते हैं, और पूरी दुनिया में चाहे आप जहाँ भी रहते हो वहाँ के वक्त के मुताबिक आप मेरा ये प्रोग्राम रोजाना सुन सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे को खास प्रोग्राम मेरा नश्र किया जाता है. चलिए चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब. सबसे पहला सॉन्ग मैं लेकर आई हूँ जिसकी फरमाइश मेरे पास आई है मयूर रघुवंशी की. आप इंडिया के ही शहर इंदौर से ताल्लुक रखते हैं और आप सुनना चाहते हैं, जो सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं उसके बोल है मोहब्बत नशा है. इश्क में बर्बाद होने के सिवा रखा न था, इश्क में बर्बाद होने के सिवा रखा न था, गम को सहने के अलावा कोई भी चारा न था. याद रह रहे कर किसी की है सताती रात भर, याद रह रहे कर किसी की है सताती रात भर, सुबह होते भूल जाना ये तुझे शेवाना था. ये तेरी उल्फत मुझे रखती है बेताबी में गुम, ये तेरी उल्फत मुझे रखती है बेताबी में गुम, ये सभी को थी खबर लेकिन कोई चर्चा ना था. दिन गुजर जाता है दुनिया की मसाफत में मगर, दिन गुजर जाता है दुनिया की मसाफत में मगर, रात ही एक इम्तिहान है जिसका अंदाजा ना था, रात ही एक इम्तिहान है जिसका अंदाजा ना था. क्या मोहब्बत वो नशा है मैं जरा जानू निसार, क्या मोहब्बत वो नशा है मैं जरा जानू निसार, जिंदगी में इस तरह पहले कभी बहका ना था, जिंदगी में इस तरह पहले कभी बहका ना था. मोहब्बत नशा है, आइए सुनते हैं ये सॉन्ग.

0: know there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: Friends, इस वक्त आप Asian Radio Live पे और सुन रहे हैं गौसिया खान शो, जिसमें आज मैं आप सबकी फरमाइशी नगमे सुनवा रही हूँ. अगली फरमाइश मेरे प्रोग्राम की भोपाल से ही है और जिसे जनाब नसीम खान साहब सुनना चाहते हैं.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 8877
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
15: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
16: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
15: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
16: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
15: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
16: 07548419678
15: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं Come.
3: You're listening to
17: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

आप सभी एशियन रेडियो लाइव पे और सुन रहे हैं आपके मन पसंद नगमे और गजलें फरमाइशी प्रोग्राम में, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, जी हाँ गौसिया खान सभी। अक्सर लिसनर्स मुझसे ये फरमाइश करते हैं, कहते हैं कि गौसिया कभी आप अपनी मनपसंद कोई गजल या सॉन्ग भी हम सबको सुनवाइए। तो आज मेरा भी दिल है कि मैं भी एक अपनी पसंद का नगमा आप लोगों को सुनवाऊं। नगमा सुनवाने के पहले कुछ अशआर आप सबकी नजर की, मरने की दुआएं क्यों मांगू जीने की तमन्ना कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगू जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे।

0: जनाब मोहम्मद इसरार साहब जो कि विदिशा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं और आप एक बहुत अच्छे फनकार हैं बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं बहुत हुनरमंद हैं और दोस्तों मैं मोहम्मद इसरार साहब का गाया हुआ एक सॉन्ग आप लोगों को सुनवाने जा रही हूं और उसके अलावा उसके साथ ही आपने एक सॉन्ग की फरमाइश की थी वो सॉन्ग भी मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी तो पहले मैं मोहम्मद इसरार साहब से जो मेरी बातचीत हुई मैं आपको वो सुनवाऊंगी और उसके बाद आपका गुनगुनाया हुआ नगमा मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी और नगमे के बाद आपका मनपसंद सॉन्ग जिसकी की फरमाइश आपने मुझे की थी मेरे प्रोग्राम में आप अपना एक मनपसंद सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो मैं आपको सुनवाऊंगी तो आइए पहले हम मोहम्मद इसरार साहब की गुफ्तगू जो हुई थी वो सुनते हैं
1: अस्सलाम वालेकुम मुसीब साहिबा मेरा नाम मोहम्मद इसरार है और मैं गंज वाजबा डिस्ट्रिक्ट विदिशा का रहने वाला हूँ मैं आपका एशियन रेडियो लाइव का ये जो प्रोग्राम है मैं बहुत इसे सुनता हूँ और आपके नगमे मुझे बहुत पसंद आते हैं आपकी कव्वालियाँ आपकी गज़लें आपके फरमाइशी प्रोग्राम को बहुत ही संजीदगी से सुनता हूँ और मैं भी शौकीन हूँ इस सिंगिंग का और एक्टिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है और मैं अपनी एक फरमाइश आपके सामने रखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरी फरमाइश ज़रूर सुनवाएंगे मेरी फरमाइश है एक और सिकंदर फिल्म से और फिल्म के गाने के बोल हैं ऐ मां खुदा तो नहीं तू मगर मैं जहाँ भी रहूँ तू मेरे साथ है बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी बहुत शुक्रिया इसरार साहब आपने मेरे प्रोग्राम को इतनी मोहब्बतों से नवाजा और आप जितने भी आप सब लिसनर्स हैं ना आप सब की मोहब्बतें हैं और आप सब जो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं और यही मोहब्बतें मेरे हौसलों को बुलंद करती हैं और

करना चाहते हैं और ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मेरे प्रोग्राम के जरिए डेडिकेट करना चाहते हैं। तो लीजिए, मैं आपका ये सॉन्ग सुनवा रही हूँ, आपका ये गीत सुनवा रही हूँ, लेकिन साथ में दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगी कि अपनी जिंदगी में चाहे आप जितना भी ज्यादा मसरूफ रहो, लेकिन खुद के लिए भी वक्त निकालिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं हमेशा अपने फैमिली के लिए और दूसरों

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट
3: टैक्सी लाइसेंस,
1: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274-201679.
4: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
15: यू आर लिसनिंग टू
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening.
1: वतन से दूर वतन का एहसास,
2: आपके जज्बात का अक्कास,
1: सदाबहार नगमों की मिठास,
2: जो है हर लम्हा आपके पास.
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़. ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो.
4: You're listening to
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो on 1413 AM.
6: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
5: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले.
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं.
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई. जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है.
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार.
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज.
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG. फोन 01274477257. दुबई ज्वेलर्स.
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका. पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर. होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक. आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे. फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले. बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से. बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL. बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी.
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है.
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा. मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं. मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे.
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR. टेलीफोन 07885428349. अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे.
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स.
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.

सो ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जो डर गया सो मर गया। सो बहुत बहादुरी के साथ उसने उस बादशाह के साथ एक जंग लड़ी और उसमें वो जीती या हारी सभी ने वो फिल्म देखी होगी। कहते हैं कि उसे दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन एक बात ये भी सामने आई है कि उसे दुनिया वालों के सामने जब चुनवाया जा रहा था तो धीरे से चोरी से पीछे से निकाल लिया गया था, क्योंकि बहुत पहले उसकी माँ ने, जो कि पहले उनकी कनीज थी, खादमा थी बादशाह सलामत से, एक ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया था गालबन, तो उन्होंने उनसे वादा लिया था कि, बल्कि वो खुश होकर अकबर ने कहा था कि अगर ज़िंदगी में उसे कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी या उसे कोई भी ख्वाहिश उसने जाहिर की तो वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो जब उसकी बेटी को, उस खादमा की बेटी को चुनवाने का कहा बादशाह ने, तो वह आई, रोई पीटी, बहुत रोई और उसने बादशाह सलामत से कहा कि आपने वादा किया था कि एक दिन आप मेरी कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे, तो आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बख्श दीजिए। सो बादशाह को रहम आ गया और उसने कहा कि दुनिया को कभी पता ना चले, लेकिन अपने उन्होंने सुना है कि उसको जिंदा छोड़ दिया था। तो गो कि वो दीवार पाकिस्तान में बाजार है, वहाँ पर उस दौर में आपको पता है इंडिया पाकिस्तान तो नहीं थे, लेकिन वो दीवार एक मशहूर है, हमारे यहाँ अनारकली बाज़ार है उस नाम पे और वहीं पर इसका मज़ार है, और ये कहते हैं कि इस दीवार में वो चुनी गई थी। लेकिन अब वो बहुत खस्ता हाल हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बादशाह ने सभी लोगों को उल्लू बना दिया था, तो क्यों ना आज हम ऐसे डायलॉग्स जो कि बहुत पॉपुलर हुए उन पर कुछ बात करें। तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये क्लासिकल।

सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों से बंधी हुई है। कब कौन उठेगा कोई नहीं बता सकता। राजेश खन्ना जी ने ये डायलॉग अमिताभ बच्चन से कहे थे और फिल्म की आखिर में शायद ये उन्होंने बोला। फिल्म का नाम था आनंद। 1970 में बनने वाली ये खूबसूरत फिल्म ने शायद ही कोई होगा ऐसा जो ना रोया हो, बहुत ही रुला दिया। एक ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनी थी कि जिसमें दुख ही दुख था, लेकिन इसके बावजूद बोरियत नहीं शायद किसी को भी हुई होगी। उस फिल्म में राजेश खन्ना जी ने इतनी खूबसूरत एक्टिंग की कि अमिताभ बच्चन भी फीके पड़ गए उसके सामने। तो आज क्यों ना हम उस फिल्म से ये गाना सुने, थोड़ा

ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान जी ने ये कहा था काजोल से। फिल्म का नाम कौन भूल सकता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995। बहुत खूबसूरत फिल्म और कई सालों से इंडिया में चलती रही है और इसका शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन फिल्मों में होता है। तो इस फिल्म के गाने बहुत हिट गए थे और बहुत खूबसूरत गाने थे। हम इसमें से जा रहे हैं आपके

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 8877
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

डायलॉग्स की बात हो रही है और हम जिक्र ना करें पाकीज़ा के एक डायलॉग का, ये पाँव नीचे मत उतारिएगा नहीं तो मैदे हो जाएंगे, यानी कि इतने हम जब किसी के पाँव को खूबसूरती में कुछ बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं तो मुँह से ये डायलॉग हमारे निकल ही जाता है, चाहे मजाक में करें। लेकिन ये देखिए ना कि वो बात आपके जहन में कहीं रह गई है, और सिर्फ मैं नहीं कह रही, जो जो ये सुन रहा है उसको याद आ गया होगा कि वो डायलॉग कितना पॉपुलर हुआ। तो पाकीज़ा की तो सारी सॉन्ग्स ऐसे हैं जिन पे मेरी जान निकलती है और जो मुझे लगता है कभी भी पुरानी नहीं होगी।

0: शो कर रही हूँ और आपको सुनवा रही हूँ डायलॉग्स, तो क्यों मेरे जहन में यही लोग, इसी दौर के लोग जो इतनी पुरानी फिल्में हैं, कई कितना पीछे चली गई हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ नई फिल्मों के डायलॉग्स नहीं याद आ रहे। ये चीज़ आप देखिए ना, नए गाने नए फिल्मों के डायलॉग्स, वो इतना असर नहीं हम पे उन्होंने किया है जितना पुरानी फिल्मों ने किया है। तो हम बार बार उनको रोते रहते हैं, जागती आंखों से हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं, सोते में भी शायद हम उन्हीं के सपने देखते हैं, इसीलिए वो गाने कभी पुराने होकर भी पुराने नहीं होते और हमेशा हमें याद रहते हैं। जैसे कि एक गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, एक इससे भी पुराने दौर का गाना है ये, और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको सुनिए और फैसला कीजिए क्या मैं सच कह रही हूँ।
1: क्या करें,
2: क्या
1: लागे तू,
2: माफ कीजिएगा।

तो जमाना चाहे आज का हो या सरंगा के जमाने का हो, रैन में नैनों में जो आंसू आते हैं तो रैन रो रो के करती है, ये बताया उन्होंने। सो उस दौर का आदमी और आज का इंसान कोई फर्क नहीं है, कितने साल बीत गए, प्यार की वही कहानी है, प्यार का वही सच है, जमाने की वही धुतकार है मोहब्बत पे, चाहने वालों को बुरी नज़र से देखना और उनके मोहब्बत के ख्वाबों को खाक मिला देना, ये जमाने वालों की पुरानी आदत है। बेवफाई पर हम इस खूबसूरत से

का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। मैंने कहा रास्ते बड़े दुश्वार हैं, उसने जब से साथ निभाना छोड़ दिया। जब ये कहा कि करना याद दुआओं में, जब ये कहा कि करना याद दुआओं में, उसने दुआ में हाथ उठाना छोड़ दिया।

मसीह ही को हम शायद से कभी भी जुदा नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए कभी कभी थोड़ी पोइट्री ऐड करती हूँ अपने शो में, उसके बगैर ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, मुकम्मल नहीं होने पा रहा। तो जैसे खाने में कहीं नमक की कमी रह जाए तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता। सो एक शेर बहुत ही खूबसूरत लगा, आपकी नज़र करती हूँ, शो का टाइम भी ख़त्म होने वाला है और मैं आपको खुदा हाफिज़ कहने वाली हूँ। जाते जाते ये खूबसूरत सा शेर आपकी नज़र है, फासलों को ही जुदाई न समझ लेना तुम, फासलों को ही जुदाई न समझ लेना तुम, थाम कर हाथ यहाँ लोग जुदा बैठे हैं। सो बहुत ही खूबसूरत बात के साथ ख़त्म करते हैं कि साथ रहिए, एक दूसरे का साथ निभाइए।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274-201679.
1: UK.
3: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services.

कहीं जवाब भी देने को जी नहीं करता, कहीं जवाब भी देने को जी नहीं करता, कहीं सलाम से पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेब पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेब प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और फिर आप हमें डिजिटल क्वालिटी में डेब रेडियो पे भी सुन सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं और आप जब चाहें हमें उन पे सुन सकते हैं। और साथियों, हमारी यही नशात आप इस वक्त सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM के जरिए।

और सभी अब प्रोग्राम रंग महफिल आपके मेजबान सैयद हसन आ रहे हैं और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथागहराइयों से खालिस पारा आदाब पेश करते हैं तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारी ये नशात सुन रहे होंगे, प्रोग्राम रंग महफिल सुन रहे होंगे, आप सभी अल्लाह के फजल करम से बाखैर आफियत होंगे। और अगर खुदा न खास्ता आज तबीयत अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सामीन आज के इस खूबसूरत दिन में, इस खूबसूरत शाम में आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं और आज की शाम आप सभी सुनने वालों के नाम। अगर आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना चाहें, कॉल करना चाहें तो आप सभी जानते हैं स्टूडियो का नंबर है 01274306677 ब्रेडफुट 01274306677। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना चाहें तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप है 00447800599563 00 तो हुआ यूके का इंटरनेशनल कोड 00 और उसके बाद 7 यूके का मोबाइल का स्टार्ट होता है और उसके बाद 800 800 599 563 599 563। आप इस पे भी हमें अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। और सुनाइए आपका हफ्ता कैसा गुजरा, क्या कुछ किया आपने? यहाँ थोड़ा सा ही तो यहाँ यूके में मौसम होता है कि जो आप इंजॉय करते हैं और वो भी अगर थोड़ी धूप वगैरह निकल आए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मौसम तो बेतबारा होता है, इसका कोई एतबार नहीं। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से और फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी।

सामीन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आवाज थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। और शुक्रिया अदा करते हैं, अभी बात हो रही थी वहीद मुराद साहब आपसे, बेहद शुक्रिया आपका। अगला गीत उम्मीद करूंगा कि आपको भी पसंद आएगा, और जितने भी इस वक्त हमारे ऑनलाइन सुनने वाले हैं उन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। आजकल जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आजकल रेडियो सबसे ज्यादा ऑनलाइन सुना जाता है। ऐप्स के जरिए सुना जाता है, वेबसाइट के जरिए सुना जाता है, और फिर गाड़ियों में सबसे ज्यादा सुना जाता है। स्पेशली जितने भी हमारे इस वक्त टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, भाई सुन रहे हैं हमें, सभी को आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस सुहानी शाम में खुश आमदेद कहते हैं। और अगला गीत उन्हीं के नाम करते हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। और साथियों, अगर आप भी कोई गीत सुनना चाहें तो कॉल कर सकते हैं 01274306677 के जरिए।

हमारे सामिन, अभी आप नेहा काकड़ की आवाज में गीत सुन रहे थे, खूबसूरत गीत था। कहते ना कि राह वफा में तुम हमें किस्मत से मिल गए, राह वफा में तुम हमें किस्मत से मिल गए, हम खुश नसीब हैं हमें किस्मत पे नाज है। खूबसूरत गीत था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुनने वालों को पसंद आया होगा। शुक्रिया अदा करते हैं रुखसार चौधरी साहब आपका मैनचेस्टर से, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और जितनी इज्जतों से एहतराम से आप नवाजते हैं अल्लाह पाक आपको भी उतनी इज्जतें दे। बहुत शुक्रिया। और अगला गीत आपकी पसंद, आपकी नज़र है।

0: Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274848 8777
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
10: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
10: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
10: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
9: UK
12: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
12: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
12: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
12: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
12: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
12: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95VR 01274 492
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
13: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
14: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंग हाउस स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
13: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश
14: मैनिंगम सुपर स्टोर
9: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
15: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
15: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
16: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
16: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
16: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
3: You're listening to
17: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुनने वाले बखैर वाफियत होंगे। शुक्रिया अदा करते हैं वसीम, बड़े दिनों बाद आपने हमें याद किया। बता रहे थे कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए आप कॉल नहीं कर पाए, लेकिन आप हमेशा हमें सुनते हैं जिसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इसी तरह हमें याद किया जनाब शकील साहब आपने, और हस्बे मामूल आज भी आप एक खूबसूरत गजल सुनना चाह रहे हैं कि कश्ती को ना खुदा का सहारा जरूर है। जी हाँ, उर्दू में तो यूं है कि कश्ती को ना खुदा का सहारा जरूर है, लेकिन गालबन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कश्ती को ना खुदा का सहारा जरूर है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कलाम को जरूर पसंद करेंगे। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया। पसंद आपकी पेशकश आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गजल सुन रहे थे, आवाज थी मताली की और ये फरमाइश थी जनाब शकील साहब की, बदले से उन्होंने याद किया था और ये गजल सुनना चाहिए थी। और वसीम अब आ गई है आपकी बारी, आप हमेशा ही कुमार सानू की आवाज पसंद करते हैं, तो आइए एक खूबसूरत गजल, गजल नहीं बल्कि गीत आपके नाम करते हैं, कुमार सानू की आवाज है। सामने बैठ के जो दिल को चुराए कोई, सामने बैठ के जो दिल को चुराए कोई, ऐसी चोरी का पता खाक लगाए कोई।

और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि गीत वसीम आपको पसंद आया होगा, खूबसूरत गीत था। और अब एक और खूबसूरत गीत हमने क्यों कर रखा है, और गीत हम नाम करते हैं और रूज आपके। इस वक्त आप हमारी ये नशात सुन रही हैं, ये गीत आपके नाम है।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: और अब एक मरतबा फिर तालियों की गूंज में तशरीफ ला रहे हैं जनाब रुखसार साहब मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। चश्मे रोशन दिले माशा बाकमाल लाजवाब और बहुत आला और हर दिल दिल शख्सियत बावकार शख्सियत बाजोक बाशोक बाद नफीस बालतीफ बहुत ही शफीक हस्ती पीर सैयद हसन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाबे वाला बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। खुश आमदेद आज के इस प्रोग्राम में।
1: आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ, और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपकी पूरी ब्रेड कोरेशियन की पूरी टीम को और जितने हमारे प्रेजेंटर हैं सभी को और खासकर पीर मुर्शिद सैयद जनाब तुराब हैदर को अथाह दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम और दुआ, और मैं मुताज हूँ कि वो मेरे लिए भी दुआ फरमाए।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी बारगाह में हम जरूर जाएंगे और दुआ के लिए दरख्वास्त करेंगे।
1: और मेरा ये अर्ज है कि मेरी अर्जी भी उन तक पहुंचानी है, मेरा सलाम भी उनको पहुंचाना है और मेरा मैसेज उनको देना है को कभी कभी आ जा करें स्टूडियो में और हम भी आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब होते हैं।
0: जरूर जरूर, मगर वो साहब जब भी स्टूडियो में आते हैं तो यहाँ इधर की चीजें उधर उधर की उधर और उधर की उधर हो जाती है, इसलिए हम थोड़े से डरते हैं मुर्शिद से।
1: चलो फिर आपको भी कुछ काम करना चाहिए ना।
0: ऐसे ही है जी जी।
1: ये तो नहीं ना कि आपको उधर फार्मे बैठे थे वो प्रेजेंटेशन करते रहे।
0: सही सही सही। पहले तो मोहतरम ये वादा करते हैं कि हम कोई खराबी नहीं करेंगे, हमें साथ लेके चलें, लेकिन जब उन्हें लाते हैं तो फिर वो बाज नहीं आते।
1: मैं पूरी पोएट्री सुनूंगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा अंदाज है उनका और हमारे फ्यूचर के आने वाले, मेरा ख्याल है अभी से आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल ऐसे ही है जी जी। सही
1: तो मैं बगैर वक्त जाया किए भैया तो मोहब्बतें हैं उनकी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला और ज्यादा उनकी आवाज में अंदाज में और ज्यादा तस्कीर अता फरमाए, ये मेरी दिल दुआ है उनके लिए।
0: आमीन।
1: तो और मोहतरम अभी तो माशाल्लाह क्या कहें इनके जनाब
0: शकील साहब,
1: क्या लाजवाब शायरी करते हैं माशाल्लाह हैं जी, जितनी ही तारीफ की जाए उनकी कम है।
0: ऐसे ही है, हस्बे अल कलाम लाते हैं और बड़ा उसे निभाने का उनका अंदाज है, उसकी अदायगी अल्फाज की खूबसूरत होती है हमेशा।
1: बेशक ला रहा है, इसमें कोई शक को शुबा तो वाली बात है नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और जनाब जंगीर साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, महबूब लाई भाई साहब हैं, उनकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी भी,
0: जी जी ऐसे।
1: चौधरी फरियाद साहब है, राना नवीर साहब है, सभी को मैं हकीर मैं नाचीज की तरफ से अथाह दिल की गहराइयों से मोहब्बतों भरा चाहत भरा उल्फत भरा अकीदत भरा सलाम। और मैं आपके लिए और आपके इतने खूबसूरत सामईन के लिए एक पोएट्री लेके आया हूँ, अगर
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: बहुत शुक्रिया। चले हैं कैसे वो मुट्ठी में दिल छुपाए हुए,
0: चले हैं कैसे वो मुट्ठी में दिल छुपाए हुए, वाह वाह।
1: नजर चराए हुए आंख को बचाए हुए,
0: क्या कहने, खूबसूरत है, शौक है, वाह वाह।
1: बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर। किसी की शोखी रफ्तार के मिटाए हुए, उठे जो हशर के दिन भी तो वो कसम छाए हुए,
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है, नहीं है मंजिले मकसूद दूर ऐ सालिक, कसम खुदा की चला चल कदम बढ़ाए हुए,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है, हया भी नाज है लेकिन ना इस कदर जालिम, के ख्वाब में भी जो आए तो मुंह छुपाए हुए,
0: क्या कहने। वो खूबसूरत शेर याद आ गया ना कि मजमे से आशिकों के वो घबराए इस कदर, मजमे से आशिकों के वो घबराए इस कदर, कुरान उठा रहे थे कि बंदा हसी नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या ये मेरी पूरी जो नज़्म है ना इसका हासिल है, जो नज़्म शेर है जो आपने सुना दिया, यकीन करें। अब मेरे ख्याल मुझे इसके आगे पढ़ने
0: नहीं, नहीं जरूर पढ़िए पूरी गजल, हम सुने बगैर आपको नहीं जाने देंगे।
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी चाहत है और ये आपका बेलोस जो मुझसे प्यार है ना, ये यकीन करें कि ये जगमगा रहा है, यकीन करें। मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ आपका,
0: अल्लाह सलामत रखे आपको, खुश रहें।
1: बहुत शुक्रिया। अर्ज किया, समझ लिया था गए आप दीनों दुनिया से,
0: वाह वाह।
1: सुना जो हजरत दिल हैं किसी पे आए हुए
0: क्या कहने फिर से पढ़िएगा, वाह वाह वाह वाह।
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज है, तुम्हारे कूचे में अग्यार तो नहीं आए किसी के नक्शे कदम से है कुछ मिटाए हुए,
0: क्या कहने बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: آخری شعر آپ کے گوشزار کرتا ہوں اور تمام سامعین کے. ریت تلاش میں آیا نہ چین ہم کو مہر کہ خارے راہ تھے تلووں پہ خار کھائے ہوئے.
0: بہت اچھے بہت اچھے, کیا کہنے, لاجواب تھی.
1: شاہ صاحب آپ کی محبتوں کا, آپ کی بے لوس چاہت کا بے حد مشکور و ممنون ہوں, اور میں ہمیشہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی نیک دعا میں یاد رکھیں گے.
0: اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے اور اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر کامیابی دے اور خوشی دے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے اور بہت سی تالیاں بھی آپ کے لیے. سلامت رہیں,
1: شکریہ, شب بخیر, شب
0: بخیر, اللہ حافظ, اللہ حافظ. اور جی ہاں سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی محترم کالر جناب رخسار چودھری صاحب, مینچسٹر سے تشریف فرما تھے.

0: हैं समीन, और अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं तो राब हैदर सैयद साहब, और ये शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं रुखसार चौधरी साहब का जिन्होंने इनकी आवाज़ सुनी और इनके पसंद को भी इन्होंने पसंद किया क्योंकि गुज़िश्ता प्रोग्राम आपने किया था। जी तो राब, इस वक्त आप रेडियो पे ऑन द एयर हैं तो आप शुक्रिया पहले अदा कीजिए रुखसार चौधरी साहब का।
1: रुखसार चौधरी साहब की बहुत बहुत अच्छे बंदे हैं, अच्छे हैं। रुखसार चौधरी साहब के लिए मैंने एक शेर प्रिपेयर किया था।
0: जी जी जी। किसी
1: ने पूछा क्या है उदासी, मैंने कहा मोहब्बत का नतीजा है।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और रुखसार चौधरी साहब ने भी आपका शुक्रिया अदा किया है। तो फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे बात होती है, ठीक है?
1: हाँ।
0: अल्लाह हाफिज।
1: ठीक है,
0: अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। जी सामिन, रुखसार चौधरी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपका शुक्रिया अदा कर दिया तो राब हैदर ने, और बहुत शुक्रिया आपका भी हम अदा करते हैं। और अब यूं है कि अगला गीत ब्रेक से पहले हम सुनते हैं और इसके बाद हम चलेंगे ब्रेक।

0: और रिया सामीन ने एक बार फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रुखसार चौधरी साहब, जो तो आप हैदर का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम, मेरे पीर और मुर्शिद, मेरे सरदार, मेरे राहबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज, यकीन करें कि दिलों को तस्कीर बख्शने वाली आवाज पीर सैयद तुर्रा बहादुर शाह साहब की। अल्लाह ताला सैयद सलामत रखे आपको, अल्लाह ताला आपकी लंबी जिंदगी करे और अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, अल्लाह ताला आपको नेक बनाए और इंशाल्लाह आप स्टूडियो में आए, हम मुंतजिर हैं और बहुत हम मुश्ताक हैं आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज और इतनी अच्छी शायरी सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया था दिल की गहराइयों
0: से। और एक शेर भी उसने सुनाया था आपको।
1: जी मैंने सुना माशाल्लाह, उन्होंने मेरे मुझे स्पेशल डेलीकेट किया जिसके लिए मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ और मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, बहुत शुक्रिया आपका,
1: थैंक यू मुर्शिद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
0: जी सामीन अब इतना ही वक्त है कि अब अगली ब्रेक पे जाना है, गाना तो अधूरा ही रहेगा, तो यूं करेंगे कि ब्रेक के बाद इस गाने को हम दोबारा पेश करेंगे।

खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ के जिसने कभी जेवर नहीं देखा। और सामी नबी आप नीरज की खूबसूरत शायरी सुन रहे थे, आवाज थी मोहम्मद रफी की, बेहतरीन गीत। उम्मीद करता हूँ कि गीत आप सभी सुनने वालों को पसंद आया होगा। और जी हाँ सामीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ है तकरीबन 18-20 मिनट्स का। अगर तशरीफ लाना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप मिला सकते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677 स्टूडियो का फोन नंबर। आइए एक खूबसूरत गीत आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं।

0: तरफ देख रहे हैं अंजुम, जैसे पहचान गई रूह है शबे तहार मुझे।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: और क्या ही हासिल गजल शेर है आपकी नजर शाहजी के, जिनसे वीरानी सहरा मेरी दुकान में है।
1: हाँ हाँ, जिनसे वीरानी सहरा मेरी दुकान में है।
0: क्या खरीदेगा तेरे शहर का बाजार मुझे,
1: क्या कहने मुझे। इससे वो खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, अपनी जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह।
0: वाह वाह वाह। और जैसे गिल ने कई बार पुकारा लेकिन ले गई राह से जंजीर की झनकार
1: झनकार मुझे। बहुत खूब बहुत खूब।
0: और नाव के जुल्म उठा दुश्नाए अंदोज संभाल, लुत्फ के खंजरे बेनाम से मत मार।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: और सारी दुनिया में घनी रात का सन्नाटा था,
1: सारी दुनिया में घनी रात का सन्नाटा था,
0: सहने जिंदा में मिले सुबह के आसार मुझे।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: सहने जिंदा में मिले सुबह के आसार।
1: कहते ना कि ये चमन ही मुझको अजीज है, यहाँ रह तो लूंगा करार से। मैं पहला मिसरा भूल गया हूँ, मुझे ले चलो ना चमन में तुम, मैं डरा हुआ हूँ बाहर से। ये खिजा ही मुझको अजीज है, यहाँ रह तो लूंगा करार से, मुझे ले चलो ना चमन में तुम, मैं डरा हुआ हूँ बाहर से।
0: वाह वाह वाह। मैं डरा हुआ हूँ
1: बाहर से,
0: बाहर से ना जीने की सहूलत है ना मरने की इजाजत है।
1: वाह वाह।
0: फकत आसान है कहना मुझे तुमसे
1: मोहब्बत है। क्या कहने, लाजवाब है। वाह वाह।
0: और मुझे उसकी उसे उसकी उसे उसकी जरूरत है।
1: हाँ हाँ।
0: सिवाय इस मुसीबत के जितनिया खूबसूरत।
1: क्या कहते हैं कि पेच दर पेच सिलसिले दिल के, पेच दर पेच सिलसिले दिल के, मुझे तुम्हारी तुझे किसी की तलब।
0: वाह वाह वाह। तुझे और की तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में गम ही गम है, मेरे दिल में तू ही तू है, जो दिलों को चैन दे दे वो दवा कहाँ से लाऊं।
1: क्या कहने, क्या
0: कहने, देखे कहाँ से
1: कहाँ से काम पहुंच गए बातों ही बातों में।
0: और वो है कि किसी की चुप का मतलब ये नहीं शिकवा नहीं उसको,
1: किसी की चुप का मतलब ये नहीं शिकवा नहीं उसको,
0: खुला ऐलान है ये तो शिकायत ही शिकायत।
1: क्या कहने, जबरदस्त है, अच्छा है। वाह वाह।
0: चुप का मतलब शिकवा, खुला ऐलान है ये तो शिकायत ही शिकायत
1: ही शिकायत है। वाह।
0: मुकर जाना बदल जाना जफा करना दगा देना।
1: क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत।
0: मुकर जाना बदल जाना जफा करना दगा देना, ये सब कुछ आ गया तुझको तो फिर तेरी हुकूमत है।
1: क्या कहने, क्या कहने, फिर से बढ़िएगा, फिर से बढ़िएगा। वाह वाह।
0: मुकर जाना बदल जाना जफा करना दगा देना, ये सब कुछ आ गया तुझको तो फिर तेरी हुकूमत।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साबर जफर का वो शेर भी इसी हवाले से है ना कि जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है, हम है सफर में और रिफाकत उसी की है, हम हैं सफर में और रिफाकत उसी की है, जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है,
0: हुकूमत उसी की। और क्या था ऐसा ही कुछ शेर बोले
1: कि मैंने ऐसे ही नहीं तेरी तरफदारी की, तू अलामत है मेरे अहद में खुददारी की,
0: खुददारी की। वाह वाह वाह। और वो था ना कि
1: जी जी
0: कुछ अजीब रंग से गुजरी है जिंदगी अपनी, के दिलों पे राज किया और प्यार को तर।
1: हा हा हा, खूबसूरत है खूबसूरत है।
0: क्या था कि इसका अगला शेर है जी गजल का, ये वाफ अबरक साद, इनका नाम आफताब अकबर है तो ये बाक अबरक।
1: जी जी, गालबन ये फेसबुक पे ज्यादा होते हैं। अच्छा
0: जी, तो लिखते हैं कि गमे हस्ती गमे बस्ती गमे दौरा गमे हिजरा।
1: हा हा।
0: गमे हस्ती गमे बस्ती गमे दौरा गमे हिजरा, और इस पे भी धड़कना दिल का हमको इस पे हैरत है।
1: वाह हा हा, खूबसूरत है। वाह वाह वाह वाह।
0: और नाब सयाद है हायल ना मेरी कैद है बात।
1: क्या कहने
0: जी,
1: जी, जी।
0: नाब सयाद है हायल ना मेरी कैद
1: है बाकी,
0: तो फिर जिंदा पे क्यों कर तू फिर कैसी हिरासत है।
1: बहुत खूब बहुत।
0: तो फिर जिंदा ये क्यों कर तो फिर कैसी हिरासत है, और कुछ इतना डूब जाता है ये अबर हर कहानी। कुछ इतना डूब जाता है ये अबरक हर कहानी में, हर एक किरदार की वहशत लगे अपनी ही वहशत।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: तो वो शेर फिर से आपकी नजर करता हूँ, शायद इसमें कोई जवाब भी हमारी गैरहाजिरी का, कि मुकर जाना बदल जाना जफा करना दगा देना, ये सब कुछ आ गया तुझको तो फिर तेरी हुकूमत।
1: क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लाजवाब।
0: शाह जी वक्त

0: जी हाँ, जाते जाते अब उस्मान भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, हमारे पास सिर्फ एक मिनट है, दो मिनट
1: बस, और क्या कह सकता हूँ, बस मैं जरा मसरूफ था तो देर हो गई है।
0: मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है,
1: देर हो जाती है, बस क्या करें।
0: कोई एक आध शेर सुना दीजिए और फिर अगली महफिल तक उठाए रखते हैं सिलसिला, कुछ क्या सुनाएंगे?
1: चलो एक शेर है मेरे अपने पार्टनर के नाम है कि मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे।
0: बहुत
1: और हमारे एक उस्ताद थे इकोनॉमिक्स के कॉलेज में, तो वो एक हम एक शेर सुनाया करते थे, वो भी मुझे याद आ रहा है
0: कि
1: इनकी हसरत न करो, इनके पीछे न चलो, साए फिर साए है कुछ देर में ढल जाए।
0: क्या कहने, लाजवाब है, लाजवाब है। फिर ये शेर पढ़िएगा, अच्छा है।
1: इनकी हसरत न करो, इनके पीछे न चलो, फिर साए हैं कुछ देर में ढल जाएंगे।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब है। और आपके लिए भी बहुत सी तालियां, अगले प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात
1: इंशाल्लाह, जरूर अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे,
0: अल्लाह हाफिज़। और जी हां समीन, अब इसी के साथ ही आज के रंगे महफिल से आप सभी सुनने वालों से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत रौनक आप सभी सुनने वालों ने लगाई, बहुत अच्छा लगा। यकीनन अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे हम इस शेर के साथ के इजाज़त मिल गई है मांगते ही, इजाज़त मिल गई है मांगते ही, ठहरना अब मेरा बनता नहीं है। अल्लाह हाफिज़।

0: दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26 007 8।
6: बेगम जरा खाना बनाना भूख लगी है।
7: मुझसे नहीं बनता, जाए बाहर से ले आए।
6: तो फिर मैं जाऊँ सेकंड वाइफ के पास?
7: मैंने टेकवे का कहा है, सेकंड वाइफ का नहीं।
6: अरे अब ब्रेडफोर्ड में सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट खुल गया है,
7: रियल इंडो चाइनीज फूड्स के स्पेशलिस्ट, जर्सी और स्पेशल अंगारा कढ़ाई, जिसने खाई उसी को पसंद आई।
6: और हाँ,

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 8877
8: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
15: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
16: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
15: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
16: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
15: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
16: 07548419678
15: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
3: You're listening to
17: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679.
1: UK.
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मेनिगम सुपर स्टोर। मेनिगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
4: मेनिगम सुपर स्टोर।
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
8: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
13: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: यू आर लिसनिंग टू
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
16: Ande, ande, ande, अरे ande यार.
17: एक बात बता मेरे यारा मैं सोच सोच

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।